कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, अर्रम तर्रम दुनिया के कैसे कैसे हम, कहीं ज्यादा कहीं कम।

आज मेरा दूल्हा नहीं कम किसी राजे से, आई बारात बाजे गाजे से, आई बारात बाजे गाजे से।

तेरे मंजिल की, वो तेरी मंजिल की तस्वीर बन जाऊंगी। मंजिल का साथ है, मिलने की याद है, तू क्यों उदास है।

प्यारी प्यारी पगन मीठी मीठी चुभन प्यारी प्यारी तड़पती हूँ मैं आरज़ूए छुपाए तड़पती हूँ मैं आरज़ूए छुपाए मुहब्बत सी।

जेब जब तक है तेरी भरी, तेरे पहलू में नीलम परी। जेब जिस दिन भी खाली हुई, जान रह जाए

0: की बधाई है, आज राम जन्म की बधाई है, बधाई है, आज राम
1: भर भर के कनक थाल, भर भर के कनक

0: मंगल मनाए सीता वनवासी मंगल मनाए फूलों के संग संग आंसू चढ़ाए फूलों के संग संग आंसू चढ़ाए सीता के मन में राम का ध्यान
1: राम के मन में सीता का ध्यान
2: प्राणों की आरती जलाई है जलाई है।

0: जाओ रे जाओ रे दुख जाओ रे ओ मुझे बाल माँ अब न सताओ रे
1: आओ रे आओ रे आओ आओ रे।